0: Cutthroat Kilari every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colors. And watch it anytime on Jio Hotstar.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
2: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

रख विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक है हादरा दूर।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने तर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापे जाए।

0: इतना प्यारा वाला गाना. आई थिंक दिस सॉन्ग गिव्स मी गूसबम्स वेन एवर आई लिसन टू दिस सॉन्ग. लता जी एंड भूपेंद्र सिंह, वॉट ब्यूटिफुल मेलेडी एंड द हाई नोट्स दैट लता जी कैन गो इज जस्ट इनक्रेडिबल.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. This is Leica Radio.
2: Hey there, main hoon Bali Brambhat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: मैं पल दो पल का शायर हूँ, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश साहब फ्रॉम द मूवी कभी कभी. व्हाट अ सुपर रोमांटिक मूवी. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड.
1: रिफ्रेशिंग एशियन हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिस गाना फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार. ऑफ कोर्स इसके गाने तो अच्छे ही थे, बट आई लव द डायलॉग्स. मेरे पास माँ है, जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था, मैं गिरे हुए पैसे आज भी नहीं उठाता. क्या डायलॉग्स है. आई मीन दिस मूवी इज वन मूवी जो आप कभी भी देख सकते हो, एंड इट इज लाइक अ टोटल बॉलीवुड मसाला. इफ यू लाइक दिस मूवी, एंड अगर आपका कोई गाना यू नो कोई डायलॉग फेवरेट है इस मूवी का, देन मैसेज मी या लेट मी नो कि आपका फेवरेट वाला डायलॉग कौन सा है.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester.

0: This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Geo Hotstar. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil
2: Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिष आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज़ बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages,

0: एक प्यार का नगमा है, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश साहब एंड लता मंगेशकर. वन मोर ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.

0: तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी जाबाज. व्हाट अ मल्टी स्टार दिस मूवी वाज. अनिल कपूर, फिरोज खान, डिंपल कपाड़िया एंड इन अ वेरी स्पेशल अपीयरेंस माय फेवरेट श्रीदेवी. एंड ऑफकोर्स इस मूवी में रेखा जी भी थी. शी एक्चुअली डिड वन सॉन्ग प्यार दो प्यार दो. आई थिंक दिस वॉज अ वेरी नाइस बॉलीवुड मसाला. वेल थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. आई थिंक योर मैसेजेस आर एक्चुअली मेकिंग माई डे एंड गिविंग मी मोर मोटिवेशन टू काइंड ऑफ प्ले सम नाइस सॉन्ग्स. एक्चुअली फ्यू ऑफ योर मैसेजेस हैव एक्चुअली टच माई हार्ट. यू नो कोई कोई मैसेजेस आपने जो किए हैं दैट सर्टन सॉन्ग्स हैव बॉट सर्टन मेमरीज. तो एक काम करते हैं, इफ ड्यूरिंग दिस आवर एनी ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई प्ले फॉर यू एंड अगर वो आपकी कोई मेमोरी ताज़ा करे, कोई याद ताज़ा करे, देन मैसेज मी एंड लेट मी नो कि वो क्या मेमोरी है. यू नो कुछ प्यार सी बातें हो एंड दिस विल बी लाइक रियली फन. आई एम वीर इन फॉर द लवली दीप राजा ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or use the SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg G Sir 1099.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: The wait is finally over.
7: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
6: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
9: Agar Kaleen bhaiya hai wo King of Mirzapur.
6: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi big. मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel, Atoll Protected.
14: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
13: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 77 3633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
15: Leicester, Navratri ni dhammakedar raton mate thai ja ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Leica Radio.
16: I have se happy wali feeling leke Diwali.
17: It's back and it's bigger.
18: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
17: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
18: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
17: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
19: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
20: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
21: Book now on diwalistory.com.
22: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
23: From Kings Heath to Smethwick, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
24: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: An extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
2: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
3: खींचे दिखाओ
4: ये क्या तुम इन ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते
3: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर और इसमें तो मैं लग ही नहीं रही हूँ इतनी मोटी लग रही हूँ
5: धमाल विद पति पत्नी और पंगा जल्द
6: ओनली ऑन कलर्स टीवी
1: नेक्स्ट द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा ऑन Leica रेडियो मिडलैंड्स
7: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन Leica गोल्ड रेडियो Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म से था ये गाना, जिसमें ये रोमांटिक सा मधुर सा म्यूजिक दिया था पंडित रविशंकर शर्मा ने। और उससे पहले आपने शराबी फिल्म का गीत सुना, जिसमें बप्पी लहरी का म्यूजिक था। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और आप सब सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ, एक बजे तक साथ ही रहूंगी और ऐसे ही गाने सुनवाती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आप सब कैसे हैं? कैसा बीता पूरा वीक? अच्छा था? मजे में था? आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं? बस यही मेरी प्रार्थना है, ऐसे ही रहें। और तीन घंटे भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके चेहरे पर स्माइल मुस्कुराहट बनी रहे। और आज की यादें में कौन है उनके बारे में जरूर बताऊंगी। एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी वाले हैं, कौन है नाम जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनवा दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is sponsored by O Hamnava Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: It's back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, कुमार सानू और सुदेश भोसले की आवाजों में ये सुपरहिट गाना सुपरहिट फिल्म से लिया था, जिसका नाम था आंखें, जो 1993 में आई थी। और ये फिल्म गोविंदा की कमबैक फिल्म थी, और इसके बाद गोविंदा ने दोबारा से एक बहुत ही लंबी पारी खेली। और हमारे योगेंद्र जैन जी कहते हैं कि ये तो मेरा बचपन का फेवरेट वाला गाना है, बचपन का।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: हमारी प्रीति जी कहती हैं बेल्जियम से कि हमने तो अपना नाम बता ही दिया है। बिल्कुल सही कहा, आपके बहुत सारे नाम यहाँ पर ऑलरेडी मेरे सामने हैं और आपके मैसेजेस भी मेरे सामने हैं, और आप सब ये बता रहे हैं कि ऋतु हम आपका साथ दे रहे हैं। तो चलिए एक नजर आपके मैसेजेस पर भी डाल लेते हैं।
3: ये है Like a Radio।
0: तो भाई आपका साथ मुझे मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। विजय गुडूरी जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ शेयर की है कि संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। और ये बात आपकी आज का विचार सुनकर मुझे भी कुछ याद आया कि ये हफ्ता मेरा बहुत अच्छा बीता, या कहूं भक्ति से भरा हुआ बीता, और मुझे इस वीक में ऐसी जैसी जगह जाने का, ऐसी ऐसी लोगों को सुनने का मौका मिला जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे गिरीश जी कहते हैं कि हमारा तो हफ्ता बहुत अच्छा बीता, आप बताइए आपका कैसा बीता। तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि इस वेंसडे मुझे एक ऐसे टेम्पल में जाने का मौका मिला जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई थी और जो मेरे घर से काफ़ी पास है। और जब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं देखती रह गई कि मेरे घर के पास इतना सुंदर मंदिर और मैं यहाँ कभी नहीं आई। और इतना अच्छा लगा, क्या माहौल था, क्या एटमॉस्फेयर था। लेटन स्टोन का शिरडी के साईं बाबा मंदिर, और उस मंदिर को देखकर मुझे असल शिरडी साईं बाबा मंदिर याद आ गया। इतना शांति का वातावरण, क्या प्रसाद था, वहाँ के लोग सब कुछ इतने अच्छे थे। मतलब वहाँ जाकर मैंने ये, एक तो मैं पछताई कि इतने दिनों से मैं यहाँ क्यों नहीं आई, और फिर मैंने एक और डिसीजन लिया कि मैं कम से कम महीने में एक बार वहाँ ज़रूर जाऊँगी। इतना सुंदर मंदिर है लेटन स्टोन में, घर के बिल्कुल पास, क्यों नहीं। और दूसरा, कल मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने का मौका मिला। उनके बहुत YouTube वीडियो देखे थे, उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन कल जब आंखों से उन्हें देखा और उन्हें सुना तो लगा कि वाकई में कुछ तो बात है। बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। सिर्फ 30 साल के हैं लेकिन इतना ज्ञान, बहुत अच्छा लगा। कल बहुत ही बढ़िया शाम हमने बिताई, और क्या लोगों की भीड़ थी, और हर कोई बस उनकी जो बातें थी उसमें डूब ही गया था। तो मेरा तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीता, उम्मीद है आप सबका भी अच्छा बीता होगा। आप सबने ढेरों मैसेजेस भेजे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। हमारे अर्जुन जी, मिसेस पे के चियांग, प्रज्ञा स्वागत है आपका, महेंद्र पटेल जी क्रॉइडन से, हंसा जी, जासू जी, आपने एक डेडिकेशन भेजी है जिसे जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी, थैंक यू। ये कौन है, ये है मौसमा जी, स्वागत है आपका इस शो में, थैंक यू। शेखर जी, प्रीति जी, नरेंद्र बागिया, योगेंद्र जैन, हमारे हरीश खत्री जी, राजेश जी, स्वागत है आपका, और कहते हैं आपकी आवाज और आपका रेडियो शो सुनना हमेशा अच्छा लगता है, थैंक यू। मुझे भी आप सबका साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जी जी, भरत जी, प्रदीप सलंकी, मालती जी, मिसेस शेख, संध्या भावसर, उल्लास जी एंड रितेश, जय श्री राम, स्वागत है आप सबका। और चलिए अब इतनी बातें कर ही ली हैं तो ये गाना आप सबके नाम कर दूं क्या।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, और ऐसी ही आवाजों में ऐसे ही गाने आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में यानी कि नेक्स्ट वाले आवर में ढेर सारे सुन पाएंगे, क्योंकि आज यादें में हम याद करने वाले हैं जय किशन दया भाई पंचाल को, जिनकी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गए थे। अनेकों गाने बनाए हैं, सुपर डुपर हिट अनेकों फिल्में उनके नाम पर हैं, क्योंकि उस दौर में दो ही म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादा चर्चा में थे, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो शंकर जयकिशन के म्यूजिक के बहुत खूबसूरत गाने हैं, कुछ गाने सुनवाऊंगी आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड की टीम स्पेशल प्रमोशन के लिए पहुंची है क्वालिटी फूड्स हेज एंड हॉन्सलो, जहां पर स्पेशल प्रमोशन हो रहा है सिद्धायु का, जहां आप रूबी रजा, काजल और सैंडी शाह को ज्वाइन कर सकते हैं आज 12 सितंबर को, और जहां पर आपको फ्री हेयर मसाज सेशन भी मिल सकता है विद सिद्धायु हेयर ऑयल एंड सिद्धायु शैम्पू, और आप वहां जाकर सिद्धायु टूथपेस्ट भी खरीद सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके जो नेचुरल गुडनेस है, जो फायदे हैं सिद्धायु आयुर्वेदा के, जो फायदे हैं उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। सिद्धायु जो है वो बैद्यनाथ, जो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, वहीं से है, उन्हीं का प्रोडक्ट है। 100 सालों से ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी है बैद्यनाथ की। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए सिद्धायु के बने हुए प्रोडक्ट्स, उन्हें बाय कीजिए, उन्हें यूज कीजिए, और फिर देखिए आपको वो कैसा लगता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी आज आपको मिल जाएगी। आप जा सकते हैं कहाँ? सिद्धायु एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हॉन्सलो, क्वालिटी फूड हेज और हॉन्सलो में।
1: ये है लाइका रेडियो, अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क, दिस इज रितु शर्मा।
0: जी हाँ बिल्कुल, आपको हम बताते चलें कि आप अगर हॉलीडेज पर जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को फोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ritu Sharma. One performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026. 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
7: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
8: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
9: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय
2: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस खूबसूरत बीचेस सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
1: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. From West Brom to Sparkhill. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
11: Tum itna jo muskura rahi ho.
12: Aapka naya station Leica Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: इस म्यूजिक को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यह नौशाद के अलावा किसी और का म्यूजिक हो ही नहीं सकता। और इस गाने पर थिरक रही है वैजयंती माला। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म लीडर से लिया था ये गाना, जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला थे। और इस गाने को डायरेक्ट किया था राम मुखर्जी ने। और आपको बता दें कि ये राम मुखर्जी जानते हैं कौन है? रानी मुखर्जी के फादर, जो एक जाने माने डायरेक्टर थे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold rate is 103.40 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Like a radio. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Kanish Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ 13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू. और Herdsman But 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West, Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell, Leicester LE54UN.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary

0: देश परदेश से लिया था ये गाना देवानंद और जीना तमान की फिल्म। और प्रीति कहती है बेल्जियम से कि ऋतु ये गाना हमें बहुत पसंद है, चलिए मैंने ये गाना आपके नाम पर किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जासू जी, आपने एक डेडिकेशन भेजी है और आपने बताया है कि आप विश करना चाहती हैं 40th बर्थडे टू माय प्रिंसेस डॉटर फाल्गुनी। फाल्गुनी आपकी बेटी है, उनकी आज बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे इटली में जाकर सेलिब्रेट कर रही हैं। ओहो, और आप इस मैसेज को रिकॉर्ड करके उन्हें भेजना चाहती हैं, तो ठीक है आप रिकॉर्ड कीजिए। फाल्गुनी आपको 40th वाली बर्थडे की जासू जी और पूरे परिवार की ओर से ढेरों ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं। मजे के साथ अपनी बर्थडे मनाइए और आपको विश कर रहे हैं मम डैड ब्रदर रीतन भाभी सुजी एंड लिटिल नेफ्यू जय, सभी की ओर से आपको ढेर सारा प्यार एंड ऑफकोर्स मेरी ओर से भी जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। और अब आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जय किशन दया भाई पांचाल को।
1: Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire.
2: This is Leica Radio.
1: Midlands.
3: Top stories this hour. Reform UK's deputy leader Richard Tice says the crypto businessman who's given the party £36 million is moving back to Britain from Hong Kong. MPs backed a foreign donation cap last week, though it's not yet law. Donald Trump has kicked off a two-day visit to Ireland and repeated claims prices will tumble if the UK allows new North Sea oil and gas drilling. He's met Prime Minister Micheál Martin. Later he'll attend the Irish Open Golf at his Doonbeg resort. Defending champion Rory McIlroy says they'll just have to put up with any disruption when the owner arrives.
4: Is it a little disruptive to play? Absolutely. But again, there's protocols in place for a reason. And, you know, all we can do is follow them and abide by them. And whenever we're ready to play again, we put our heads down and we go and play.
3: The Ministry of Defence has denied reports a military aircraft's flight plan was behind this week's air traffic control glitch. Around 2,000 UK flights were affected. Half a 17th floor flat has been damaged in a fire in a 22-storey tower block in Poplar in East London. It was brought under control this morning. An investigation has found a peptide sold on social media as improving skin and hair was made up of 90% unknown chemicals. Despite ads marked not for human consumption, some sellers are advising the vial be injected. Peptides like insulin have proven benefits, but the unregulated market's worrying scientists like Professor Perdita Barron.
5: There's a lot of impurities in it, and I would say it's only 10% pure. Those other chemicals that we don't know what they are could give them a small reaction or might not do anything, but somewhere down the line, they might hang around in their body, they might affect them, and we just don't know that.
3: And some sensational batting from Pakistan's number nine has helped push the third test with England into an unexpected fourth day, which begins shortly. Razaullah's 81 off 63 means the hosts need 130 to win at Edgbaston. From Sky News, I'm Matt Steele.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। और आज लंदन में मिला जुला मौसम रहने वाला है, कभी धूप कभी छांव। मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक जाएगा। मैनचेस्टर में भारी बारिश हो सकती है, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री रहेगा। और मिडलैंड्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास ही रहेगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: ये है लाइका रेडियो।
1: रितु शर्मा।
0: जी हाँ, मैं रितु शर्मा ही हूँ और ये है प्रोग्राम का सेकंड आवर, जिसमें होती हैं यादें, और आज की यादें में हम याद करने जा रहे हैं जय किशन दया भाई पांचाल को, जिनकी की आज पुण्यतिथि है। बहुत ही छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ बातें और उनके कुछ गाने।
1: Like a radio.
2: Like a radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across the Like a Radio network, this is Ritu Sharma.

0: किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म का ये गाना, जिसे म्यूजिक से सजाया था शंकर जयकिशन ने, और ये गाना तो जैसे अमर ही हो गया है। जब आया था तब भी सुपरहिट था और आज भी ये गाना सुपरहिट ही है, सुनते हैं तो मजा ही आ जाता है। और उससे पहले आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दुनिया फिल्म का गीत सुना, जिसका म्यूजिक भी शंकर जयकिशन ने ही दिया था। और आज शंकर जयकिशन की जोड़ी के ही गाने सुनवाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन दया भाई पांचाल की पुण्यतिथि है। बहुत ही छोटी सी उम्र में, सिर्फ 41 यानी कि 41 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे जयकिशन। आज ही के दिन 12 सितंबर 1971 में इनका निधन हुआ था। लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी ने कमाल कर दिया, क्या गाने बनाए, और आज ऐसे ही कुछ गाने मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। लेकिन आपको बताऊं कि ये जोड़ी कैसे बनी। दरअसल जयकिशन जी जो हैं, उनका जन्म तो नवंबर में हुआ था, 4 नवंबर 1929 में गुजरात में, और वो हारमोनियम बजाने में बेहद निपुण थे, बहुत ही खूबसूरत हारमोनियम बजाते थे। और जब वो काम की तलाश में मुंबई पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात शंकर जी से हुई पृथ्वी थिएटर में, और जहां से एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई। दोनों को एक दूसरे से मिलना, बातें करना पसंद आया और दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना मिलकर काम किया जाए। और इनके करियर की शुरुआत हुई राज कपूर की फिल्म बरसात से, और आप जानते हैं कि बरसात के गाने सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। और जब एक ही पहली ही फिल्म में ऐसा कमाल का म्यूजिक दिया हो तो उसके बाद इन्हें काम ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर तो राज कपूर के ये फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। बरसात के बाद इन्होंने आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, संगम, गाइड और भी न जाने कितनी फिल्मों में सुपर डुपर म्यूजिक दिया है, सुपर डुपर हिट म्यूजिक दिया है। सारे के सारे गाने जी तो चाहता है बजा दूं लेकिन बजा नहीं सकती। कुछ गाने मैंने चुने हैं, एक और ऐसा ही बहुत खूबसूरत सा गीत आने वाला है अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपको याद दिला दें कि 1 pound के बदले में आज आपको मिल सकते हैं 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends, featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shibdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa. पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
6: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक Everyday Grand.
10: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99 टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीसेस शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99
11: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN
12: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th अक्टूबर लाइव फ्रॉम इंडिया गरबा डांडिया म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती School Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Laika Radio.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London. Laika Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मुकेश जी की आवाज में ये सदाबहार गाना फिल्म संगम से लिया था और राज कपूर के लिए तो शंकर जयकिशन ने कमाल का म्यूजिक दिया है, हम सब जानते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि पहले जब फिल्म आती थी तो उसमें सिर्फ हीरो हीरोइन के नाम ही पोस्टर पर रहा करते थे, लेकिन जब शंकर जयकिशन की जोड़ी आई और उनका म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गया तो जानते हैं कुछ बदलाव हुआ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ye hai Leica Radio. और जानते हैं वो बदलाव क्या था? वो बदलाव ये था कि जो फिल्म के पोस्टर्स थे उन पे राज कपूर और नरगिस के बराबर में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया था शंकर जयकिशन का नाम। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी संगीतकार जोड़ी को इतनी इम्पोर्टेंस मिली थी कि हीरो हीरोइन के पोस्टर के साथ उनके नाम को भी फिल्म के पोस्टर पर डाला गया था। और ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में फिल्म का पोस्टर ही अपने आप में बड़ी बात थी। रेडियो सेट्स हुआ करते थे जिस पर कुछ दिखाई नहीं देता था और फिल्म पोस्टर्स को ही लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, और ऐसे में उस पर नाम आना कमाल की बात थी। और उसके बाद तो शायद ये चलन चल गया, बाद में म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम भी फिल्म के पोस्टर्स पर आने लगा। एक और गीत सुनवाती हूँ आज की ही जोड़ी का, जोड़ी मतलब शंकर जयकिशन की जोड़ी के, जयकिशन जी जिन्हें आज हम यादें में याद कर रहे हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: एक और कमाल का गीत शंकर जयकिशन की जोड़ी का, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम कन्यादान। और देखिए शंकर जयकिशन ने मुकेश जी के साथ भी सुपर हिट्स दिए, रफी साहब के साथ तो क्या बात है, किशोरदा के साथ भी अमर गाने बनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो गाना था ना, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दरअसल ये गाना जयकिशन जी की ही रचना थी जिसे बाद में मोहम्मद रफी साहब ने गाया और ये गाना अमर हो गया। लेकिन क्योंकि शंकर जयकिशन दोनों जोड़ी में काम करते थे तो नाम दोनों का आया, लेकिन इस गाने को दरअसल जयकिशन पांचाल ने ही बनाया था, जिनकी की आज पुण्यतिथि है और जिन्हें आज हम यादें में याद कर रहे हैं।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको याद दिला दें कि भाई कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो स्टार। 3 one-day internationals from Sunday 13 September until Thursday 17th September from 2:50 PM. Download and subscribe to the JioStar app now. Or JioStar is also available on Sky TV as an app.
2: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica Radio.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर एक और खूबसूरत गाना मुकेश जी और आशा भोसले की आवाजों में आपने सुना, और आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि भाई लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड की टीम पहुंची है स्पेशल प्रमोशनल इवेंट्स के लिए, जो कि सिद्धायु के लिए है एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हॉन्सलो, और जहां पर आपको रूबी रजा, काजल, सैंडी शाह मिलेंगे। और आज हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स वहां पर हैं, और जहां पर आपको फ्री हेयर मसाज सेशन भी मिलेगा और भी बहुत कुछ। आइए बात कर लेते हैं, काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे पूछते हैं कि काजल वहां पर क्या हो रहा है। हाय काजल।
1: बहुत बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। वी आर लाफिंग, वी आर लिटरली गेटिंग अ फ्री हेयर मसाज डन। आई जस्ट हैड माइन डन एंड वीव हैड आई बीन यूजिंग ब्लैक सीड हेयर ऑयल इन माय हेयर टू गेट द हेयर मसाज डन, एंड आई वाज बिट स्केप्टिकल बिकॉज़ आई थॉट इफ आई गेट अ फ्री ऑयल मसाज डन इट विल बी फन, बट देन माय हेयर विल बी ऑयली स्टिकी। नथिंग ऑफ द सॉर्ट, इट स्मेल्स सो गुड, it's not sticky, you can't even tell that you have hair, oil in your hair, and the best part is that it's so relaxing and it's free as well. So the listeners of Lyca Radio Network need to come down to aisle number 30 and 31 at Quality Food in Hounslow and try out this free hair massage oil. With me I have Sandy Shah,
2: and even I'm getting a head really casting up.
0: Main bilkul achhi hu, aap bataye.
2: मैं अपनी रेशमी जुल्फों के लिए भी यहाँ आया हूँ हेयर मसाज के लिए। आप हंस क्यों रही हैं?
0: मैं मुझे यूं ही हंसी आ रही है।
2: अच्छा, यूं ही आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो रेशमी जुल्फे हैं मैं भी यहाँ करने आया हूँ वो हेड मसाज। तो आप सब आए। Thank you.
1: Okay. Also, just to let you know as well that for every customer that comes here, there are some free goodies as well, some toothpaste to try out, to take home as well, so some small samples. So if you are in the area, do come down, try the Sidhayu hair products, the toothpaste. Everything is absolutely organic and beautiful. It's got lots of herbal activities, and there are different varieties you can choose from. So I personally like black seed hair oil, but there are other ones. There's neem, there's coconut. So do come down. Again, aisle 30-31 at Quality Foods in Hounslow. And we'll speak to you later, Ritu.
0: Yeah, sure. Thank you, Kajal. Thank you for all the information.
1: Take care. Bye.
3: Lyca Extra Podcast Update.
0: तो चलिए आपको जल्दी से लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की अपडेट भी दे दें कि नया एपिसोड आया है। इसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेप्थ। खोश ने इसे होस्ट किया है, और आप हमेशा की तरह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जितने भी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाकर वहां सुन सकते हैं।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Lyca Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Lyca Radio mobile app, or log on to lycaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Lyca Radio Network by emailing sales@lycamedia.co.uk. Lyca Radio.
4: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AX.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Lyca Radio Network.
6: Banana function rakha hua.
7: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन। फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और call 07956 154 846.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Ganpati पापा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
13: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
12: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
14: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
15: Diljit Dosanjh non-stop on Leica Radio Punjabi. Listen now on the Leica Radio mobile app at leicaradio.com and on Alexa.
3: On this week's Leica Extra podcast, we talk myths and misconceptions about raising debts, where Kush speaks to Meenal.
16: A right kind of leverage on your balance sheet is actually good. You cannot grow your business without having a good debt. Debt is not an enemy of your business.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands, and Greater Manchester.

0: शंकर जय किशन की जोड़ी की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म का गीत कैसे ना बजाए ऋतु जब बात हो इस जोड़ी के जय किशन के बारे में या इस जोड़ी के बारे में। आज कुछ गाने मैंने आपको सुनवाए, इनफैक्ट एक और बहुत ही सुंदर सा गीत सुनवाने वाली हूं और ये गीत आप सबको पसंद है, आप सबके नाम पर जाता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is £103.40 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is the LEICA Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: क्या कमाल का म्यूजिक है राजेश रोशन का. याराना फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह की फिल्म. और उससे पहले आपने भींगी पल के फिल्म का गीत सुना कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा. और ये गाना तो मैं जरूर आप सबको ही डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब भी हमारे स्टेशन को पसंद करते हैं और जब आप ये कहते हैं तो हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं. सो थैंक यू इतने सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, इतने प्यार के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए और साथ देने के लिए. ये प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है और इस आवर में आप जानते हैं क्या होता है. अरे नहीं जानते, चलो मैं बताती हूँ. हम खेलेंगे थ्री वर्ड्स गेम और सुनवाऊंगी आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी. और आज आपको बोनस गाना एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक मन्ना डे हैं, तो वो गाना भी आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक वाला ही गीत होगा. तो तैयार रहिए उसके लिए. लेकिन फिलहाल बताने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स. और हमेशा की तरह ये तीन वर्ड्स मैंने बॉलीवुड के गाने से लिए हैं और आपकी मदद के लिए कुछ हिंट्स भी दूंगी. आपको पहचानना है कि गाना कौन सा है. तो पहला वर्ड है ख्याल, दूसरा है मुस्कुराए और तीसरा वर्ड है नजर. मदन मोहन का म्यूजिक है, 1964 में आई थी ये फिल्म और आशा भोसले की आवाज है. गाना बहुत सुंदर है. बताइए, सोचिए कौन सा हो सकता है ये गाना. आई नो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हजारों गानों में से कोई एक गाना पहचान पाना आसान नहीं है, लेकिन ये काम आप हर बार करते हैं, हर हफ्ते करते हैं. कैसे कर लेते हैं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन चलिए देखें आज आप कर पाते हैं या नहीं. ख्याल पहला वर्ड है, दूसरा है मुस्कुराएं और तीसरा वर्ड है नजर. ख्याल, मुस्कुराएं, नजर. मदन मोहन का म्यूजिक, 1964 की फिल्म और आशा भोसले की आवाज. कौन सा हो सकता है ये गाना, सोचिए और अगर पता चले तो भिजवा दीजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो भाई हम आपको बताए हैं कि आज का थ्री वर्ड्स कौन से हैं और आपको पता है तो आप बताइए. रिपीट वंस अगेन, ख्याल, मुस्कुराएं, नजर. मदन मोहन का म्यूजिक है, 1964 की फिल्म है और आशा भोसले की आवाज है. कौन सा है ये गाना. और हमारे कुछ साथियों ने मैसेज भेजा है और आपने बताया है कि आज आप महावीर जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो जो भी साथी आज के दिन महावीर जयंती मना रहे हैं उन्हें हमारी ओर से ढेरों ढेरों बधाइयां, आज के दिन की शुभकामनाएं और आज का दिन आपका बेहद अच्छा बीते. और इसके अलावा आपके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं रोशनी जी, रजिंदर राज, महेंद्र पटेल जी, मोहम्मद अयूब चौहान, सपना एंड परेश व्यास, जयेश जी, संध्या भावसर, फरीदा गुलाम अली जी, रितेश, सारा पटेल एंड ये है परेश व्यास, सपना व्यास, मानू जी, संतोष जी, देसराज बसन जी, सतीश जी, निर्मला जी, शेखर जी, साक्षी आप हमें सुन रही हैं, दिनेश पोपट जी, जैस्मीन एंड रानी जी स्लाव वाली, सभी को मैं धन्यवाद कहती चलूं. और अब मेरी नजर जाएगी आपके जवाबों पर, देखते हैं कितने लोग आज के गाने को पहचान पाते हैं.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. ये है
2: Leica Radio.
3: क्योंकि सांस भी कभी.
4: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
2: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
9: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
10: Okay, help's on its way.
11: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
14: Diljit Dosanjh non-stop on Laika Radio Punjabi. Listen now on the Laika Radio mobile app at laikaradio.com and on Alexa.
15: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and laikagold.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मन्ना डे है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक और ये थी फिल्म बसंत बहार जिसमें एक बार फिर से शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। और आपके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं क्योंकि हमारा 3 वर्ड्स गेम चल रहा है। थैंक यू जयंत एंड मीना जी, आप शो को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू अर्जुन जी, कहते हैं मेरा तो मोस्ट फेवरेट वाला गाना है। चलिए हमने ये गाना आपके नाम किया और अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना और पहला वाला गाना बजाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी और कमल बरोद की आवाजों में था ये गाना, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। बहुत सारे साथियों ने आज के गाने को सही पहचान लिया है, लेकिन आज आंसर्स थोड़े कम मिले हैं क्योंकि शायद ये गाना कुछ लोगों को पता नहीं है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप में से जिन लोगों ने सही सही गीत को पहचाना है, मैं उनके नाम जरूर बताऊंगी। सबसे पहले स्वाति बेस वोटर से आपका आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। दामिनी बेन, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। दिनेश पोपट जी, योर आंसर इज करेक्ट। नरेन पटेल जी, आपका आंसर भी करेक्ट है। दिव्या जी हैरो से, उल्लास टोरंटो से, गिरीश जी इंदौर से, हाजरा जी, विजय गुडूरी जी, तोची जी एंड कुकी जी, बिल्कुल सही सही गीत को आपने पहचान लिया है। और अमर जी कहते हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो चलिए बताती हूँ। पहला वर्ड है ख्याल, दूसरा वर्ड है मुस्कुराए और तीसरा वर्ड है नजर। मदन मोहन का म्यूजिक है, 1964 की फिल्म है और आशा भोसले की आवाज है। कौन सा है ये गाना, अगर आपको पता है तो हमें बता दीजिए, भिजवाइए अपना मैसेज हमारे नंबर पर।
1: दिस इज रितु शर्मा।
0: और अगला आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भाई बिग बॉस शुरू हो गया है, सीजन 20 आप सब देख ही रहे हैं, और एक बार फिर से सलमान खान इसे होस्ट कर रहे हैं। हर रोज 9:30 बजे कलर्स टीवी पर और जियो स्टार पर दिखाया जा रहा है, और पहली बार ये जियो स्टार पर हर एपिसोड इसका दिखाया जा रहा है, और आप 24/7 लाइव फीड भी देख सकते हैं। जियो स्टार अवेलेबल है एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

वही मदर इंडिया फिल्म का ये सुपरहिट गाना था जिसमें म्यूजिक था एक बार फिर से नौशाद जी का, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और निम्मी जी कहती हैं कि ऋतु हंसता हुआ नूरानी चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। सच्ची में नहीं था क्या? मैंने देखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फील तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही था ना, आपने तो एंजॉय किया ना, बस काफी है। वैसे भी रेडियो पे कलर किसको दिखता है रेडियो में तो सिर्फ गाने सुनाए आते हैं ना। एनीवेज थैंक यू। और ये डेडिकेशन भेजा है सुरेश जी आपने, कहते हैं कि आज मेरी डॉटर रीनल का बर्थडे है, तो आप उन्हें विश कर सकती हैं और कोई स्पेशल गाना लगा सकती हैं। स्पेशल गाना तो मैं वही बजाऊंगी जो अब हमारे 3 वर्ड्स गेम वाला गाना है, वो ही गाना रीनल को डेडिकेट करेंगे। लेकिन हाँ, सुरेश पटेल जी आपकी ओर से आपकी प्यारी बिटिया रानी रीनल को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां हम जरूर पहुंचाएंगे। एंड मेरी ओर से भी रीनल आपको हैप्पी बर्थडे, पूरे परिवार की ओर से हैप्पी बर्थडे। और आज सैटरडे का दिन है, मजे के साथ बर्थडे मनाइए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. और कहीं घूमने जाने की आप सोच रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि साउथॉल ट्रैवल जिनकी बढ़िया अच्छी डील चल रही है दुबई के लिए, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0208-574-8410 पर। साउथॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड। Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeh hai Laika Radio.

0: मदन मोहन के म्यूजिक पर ऋषभ भोसले की आवाज में ये गाना आज के हमारे थ्री वर्स गेम वाला गाना था और बहुत सारे साथियों का कहना है कि ये हमारा फेवरेट गाना है जिसे हमने काफी दिनों बाद सुना है। तो बिल्कुल आप सबके नाम पर जाता है ये गाना और बस बहुत सारे आंसर्स मिले थे लेकिन गलत भी थे बहुत सारे। आज थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन जिन्होंने सही सही बताए थे उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हमारी टीम पहुंची हुई है क्वालिटी फूड्स हेज और हौंसलों में और काजल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी है। आइए जानते हैं काजल से कि वहां पर अब क्या हो रहा है। हाय काजल।
2: हाय रितु। यहाँ पे एक लंबी क्यू है क्योंकि सभी लोगों को एक फ्री है मसाज कराना है और जो जिससे वो ले रहे हैं उनके नाम है चेतना। चेतना मेरे साथ है अभी। She is the one who gave me a lovely hair massage as well. तो हम चेतना से पूछेंगे एक क्वेश्चन कि why is it important to have oil when you're massaging hair? Why is it so important to use hair oil?
3: बेसिकली अपन जो ऑयल यूज करते हैं तो हेयर में रूट्स में जाना चाहिए, स्कैल्प में जाना चाहिए। सो ऑयल पूरा बेनिफिट करेगा और पंपिंग ऑफ द स्कैल्प एंड रूट्स सो इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर हेयर्स ऑयल्स एंड ऑल्सो ये अपन क्या बोलते हैं कि हेयर डैंड्रफ हो गया है, डैमेज हो गया है, बिगड़ गए हैं मशीन पूरे यूज करके। तो ऑयल मसाज करते हैं 3 to 5 minutes तो पूरा रिलैक्सिंग फील होता है और इज रिलैक्सिंग एंड पीसफुल एंड देन ऑयल इज वेरी हेल्पफुल और हेयर।
2: तो मैंने देखा कि काफी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे एक नीम है, यहाँ पे क्लोव है। सो व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ दीस? सो जैसे अभी नीम आपने मेरे बाल में यूज किया, उनके बेनिफिट्स क्या है?
3: नीम के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अपने ट्रेडिशनल में ऑफ कोर्स नीम्स बहुत यूज होता है और इसकी स्मेल अच्छी है, स्मेल इज वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सो नीम ज्यादातर है ना रूट्स रिकवरी के लिए ज्यादा यूज होता है, हेयर टूटते हैं लोगों के तो उसके लिए ज्यादा नीम बेनिफिट होता है और नीम इज अ ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक।
2: और साथ में कोकोनट भी है। तो व्हाट विल यू से कि आमला इज यूजफुल?
3: आमला है, आमला ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि आमला कितना हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए और हेयर के लिए सबके लिए कितना बेनिफिट है। तो आमला को अपन ऑयल एज ए ऑयल यूज करते हैं तो वो डैंड्रफ जो निकाल देता है आमला और स्मूथनेस ला देता है आमला एंड ऑल्सो टाइडीड अप कर देता है, पूरे टाइट कर देता है। तो ऑफकोर्स हेयर आमला ऑयल इज वेरी बेनिफिट बेस्ट
2: डेफिनेटली। चेतना थैंक यू, यू गॉट अनदर कस्टमर वेटिंग, आई विल लेट यू गो। सो रितु जस्ट टू गेट बैक टू व्हाट चेतना वाज सेइंग, देयर आर वैरायटी ऑफ हेयर ऑयल्स एंड शैम्पूज फॉर ऑल हेयर नीड्स, सो वेदर यू गॉट थिक हेयर, वेदर यू गॉट डैंड्रफ, वेदर यू गॉट ड्राई हेयर, Sitari products are here at the moment at Quality

0: Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: The gold rate is 103.40 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: LIKA Radio. तो लीजिए, आप सबके साथ पता ही नहीं चला 3 घंटे कब खत्म होने को आए. और बस अब क्या, एक गाना और बजेगा और उसके बाद जाने की बेला. और मेरे बाद इस शो में आपका साथ देंगे अनुराग लाइका गोल्ड पर, आनंदी होंगी लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर, और मैनचेस्टर पर लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर फजीला आपका साथ देंगी. लेकिन कल हम फिर से मिलेंगे, जोड़ी नंबर 1 भी सुनेंगे, ढेर सारी बातें भी होंगी. और हाँ, आपको बता दें कि मंडे भी रवि शर्मा जी के शो में, जो कि लाइका रेडियो मिडलैंड्स और गोल्ड पर आता है, मैं आपका साथ दूंगी. तो आज का हमारा वीकेंड, यानी कि ये वीकेंड थोड़ा लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा. तो कल भी मिलेंगे और मंडे को भी आपसे मुलाकात होगी. लेकिन फिलहाल के लिए तो आप सबसे बाय बाय. थैंक यू सो मच आज की यादें को पसंद करने के लिए, गीतों को पसंद करने के लिए, ऑफकोर्स अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए. एंड थैंक यू गिरीश जी, जो 4 लाइनें आपने लिए मेरे लिए लिखी हैं, बहुत ही सुंदर है. थैंक यू सो मच. क्या करें, हो जाए, बाय बाय. चलिए मिलते हैं आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू टुमारो.
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: This is the Like a Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लेस्टर LE54UN.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: I happen to happy valley feeling lucky. It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
10: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.com.

0: Oh, just one of those tracks you just want to groove to, isn't it? Anyway, stay with me because I've got your 90s throwback in just a little bit. Not too late to get in there with the answers to my quiz.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £103.47 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Weekend Bliss with Anandi Shah. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
5: वन परफॉर्मर
6: के सामने तो प्रोसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भाई या खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
3: काउंटलेस पर्सनालिटीज
7: जिंदगी बर्बाद हो गया.
2: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट.
8: फंक्शन रखा हुआ है.
3: सुनील ग्रोवर लाइव UK टूर 2026
2: 29th अक्टूबर ओवर अरेना वेम्बली लंदन 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर.
3: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: The wait is finally over.
10: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
9: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
12: अगर कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर.
9: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
13: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
14: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
15: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरेबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरेबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
17: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
18: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
19: Dubai is the place.
18: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
20: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
21: नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया. गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर. टिकट्स जस्ट £5 दी स्टार्ट. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल बीजे 07957.
1: 90s throwback plays now.

0: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन,
2: द वेट इज

0: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
1: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
0: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
1: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
1: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपन।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Carotino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
5: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
6: Yeh hai Leica Go!

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ कि दोनों गीत आपने पसंद किए। और एक गीत था फिल्म इश्क से, जिससे हमने आज के प्रोग्राम का आगाज किया। 1997 में आई थी ये फिल्म, जिसे इंदर कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में काम किया था आमिर खान ने, अजय देवगन थे, जूही चावला एंड काजोल, एंड अन्नू मलिक का था संगीत। और इस फिल्म के जरिए एक नई आवाज़ भी हमें सुनने को मिली थी, और वो आवाज़ थी विभा शर्मा की, जो यहाँ लंदन की रहने वाली थी। और उन्होंने इस फिल्म के गीत गाए थे लाइक इश्क हुआ कैसे हुआ, इफ़ यू डू रिमेम्बर, वो वाला गीत कुमार सानू के साथ, कैसे कहूँ कैसे हो तुम, वो भी गीत उन्होंने गाया था और बड़ी मीठी सी आवाज़ थी। एनीवे, इश्क का गीत आपने सुना, और दूसरा गीत मैंने सवेरे वाली गाड़ी इस फिल्म से चुना था। सवेरे वाली गाड़ी में धर्मेंद्र जी भी थे, और कौन कौन था, सनी देओल थे, पूनम ढिल्लन थी, एंड प्रेम चोपड़ा ने भी काम किया था, एंड बिंदु भी थी। एंड भारतीय राजा ने इसे डायरेक्ट किया था, एंड संगीत था आर टी बर्मन साहब का। और मुझे ये गीत हमेशा बहुत अच्छा लगा, जिसमें दो आवाज़ें आपने सुनी, और वो आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। राइट, ये तो गीतों की बात होगी, अब ज़रा आपसे बात कर लें, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चेयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने कोशिश करती हूँ चुन चुन कर जो आपके मन को भा जाएं, और अगर आपके दिल को भा जाएं ये गाने, तो मुझे अपने होने का एहसास ज़रूर दिला दीजिएगा। मुझे बता दें कि आपको पसंद आया ये गीत, आपकी पुरानी कुछ यादें ताज़ा हुई, आपने गुनगुनाया भी इन गीतों के साथ साथ, तो मैं जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ, क्यूरियस रहती हूँ। जो मेरे साथी ऑलरेडी मैसेजेस भेज रहे हैं, भेज दिए हैं जिन्होंने मैसेज, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो आते ही मेरे मुझे स्वागत करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, तो मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, we SBI UK, yani स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। आप ब्रांच में जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI योनो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है, तो उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। और आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 90 paisa. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई, पहले दो गीतों में एक वर्ड बार बार सुनने को मिला आपको, और आप पहचान भी गए हैं कि कौन सा वर्ड है। अगर कोई ख़ास गाना आपको याद आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं, हो सकता है मैं अपनी प्लेलिस्ट को चेंज कर पाऊँ। तो जल्दी से मुझे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दीजिएगा।
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन माइका रेडियो। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के।

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: प्यार में नोकझोंक होती रहती है वैसे, और ऐसा ही नोकझोंक से भरा हुआ ये गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म तुमसा नहीं देखा, जो 1957 में आई थी. अब देखिए ना, आज भी इसका संगीत और गीत के बोल, गीत गाने का अंदाज आशा जी का और मोहम्मद रफ़ी साहब का कितना पसंद आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने भी बहुत पसंद किया. अपनी अपनी फरमाइशें भी आप लिखकर भेज रहे हैं, और उल्लास जी ने अभी लिखकर भेजा है, सरिता जी सच्चा झूठा का दिल को देखो चेहरा ना देखो, वो गीत भी शामिल कर दे. तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जरूर मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद को मैं पूरा कर पाऊं.
0: दिस इज लाइक अ रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: भी आपकी फरमाइशें भी आ रही हैं और मैसेजेस भी लंबे लंबे और आपने लिखा है सॉरी सरिता जी आई वाज लेट टू सेंड मेंट टू सेंड मैसेज ही प्लेड वेरी बेस्ट सॉन्ग प्लीज पास माय रिगार्ड्स टू हिम किसको भाई किसको अनुराग जी को ओल्ड बेस्ट फ्रेंड मधु जी एंड जो कैंटन में प्रोग्राम सुन रहे हैं विजय गुजरी जी आपने भी कहा क्या बात है रफ़ी साहब और शमी कपूर का साथ हो तो गाने सारे लाजवाब होते हैं थैंक यू आपका भी विमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह से साथ देते रहे हैं एंड तोशी अमृता जी आप भी सुन रही हैं मिसेस शेख थैंक यू अमित पटेल विमल रायन जैस्मिन वजाहत आप वैद जो अलेक्सा पे सुनते हैं हमेशा निर्मल एंड किरत जी आप सभी का धन्यवाद सोइनी रावल जी भरत गंगाराम जी प्रज्ञा जी अर्जुन जी हंसा बोरा भारती जी हसमती आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत से नाम है मैं बारी बारी सबके नाम लेने की कोशिश करूंगी
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स

0: करो।
1: ये गोल्डन हिट्स हैं, जी हाँ। और लाइका गोल्ड को भी 5 साल हो गए हैं पैदा हुए, यानी जब से लाइका गोल्ड बना। पहले ये दिल से रेडियो था। और बहुत से हमारे प्रेजेंटर प्यारी सी काजल ने, रितु ने भी 80s लुक की फोटो पोस्ट की, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। एक्चुअली मुझे कहा गया था, सो मैंने अपनी सोशल मीडिया पर अभी पोस्ट की है। एक मेरी नेचुरल फ़ोटो और उसके साथ AI ने जो 80s की लुक मुझे दी है वो फ़ोटो, तो आप देखिए, उस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि सरिता 80s में कैसी दिखती थी। आपको 80s की लुक ज़्यादा पसंद है AI वाली, या फिर जो मेरी नेचुरल लुक थी उसके ऊपर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ लें।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है
2: लाइका रेडियो।

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: दिल सचाओ और चेहरा देखो, दिल को देखो चेहरे को ना देखो. ब्यूटीफुल गाना था ये. फिल्म मनमोहन देसाई जी ने बनाई थी. उन्होंने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को. राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम किया था. एंड कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था. एंड सच्चा झूठा बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना की अदाएं देखने वाली थी, बहुत खूबसूरत. आपने देखी ये फिल्म? अगर नहीं देखी, जब कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा. हाँ, ये भी बता दूँ कि राजेश खन्ना का डबल रोल था इस फिल्म में. और आई थिंक इनकी सिस्टर का रोल किसने किया था? नाज थी. अगर नाज ही थी तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा. एंड राजेश खन्ना वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड ही वन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर 1971. और बहुत 69 से लेके 71 तक का टाइम तो राजेश खन्ना का पीक वर्क था, पीक टाइम था. और बहुत सी फिल्में आई थी इनकी, लाइक मर्यादा भी, अंदाज, ये सारी की सारी बहुत पॉपुलर हुई थी. और जो मेरे साथी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. हंसा जी, आपका भी मैसेज मिल गया. भारती जी, थैंक यू, आपका भी मैसेज मिला. आप इसी तरह से इंजॉय करते रहिएगा. एंड अगला गीत भी आपको पसंद आएगा, ऐसी मैं आशा तो ज़रूर रखती हूँ. तो चलिए अब ज़रा करेंसी का रेट भी बता दें आपको.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.29, Afghan Afghanis 87.84, Pakistani rupees 375.62, Bangladeshi taka 166.49, Sri Lankan rupee 444.40 and Kenyan shillings 175.12, US dollars 1.35 and Mauritian rupee 63.53.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold ka rate is waqt market mein chal raha 103 pounds and 40 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. From West Midlands to East Midlands, this is Leica Radio Midlands. ये है Leica Radio. Leica Radio.
0: भी आप सभी जानते हैं कि कौन सा वर्ड कॉमन रहा है आज के प्रोग्राम के इस आवर में. यस यस, देखो. आपने देखा? मैंने देखा, उसने देखा, किसने देखा, क्या देखा? एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूं जल्दी से कि हमारी गोल्ड नाइट्स भी ज़रूर सुना करें. ओवरनाइट सर्विस बहुत पॉपुलर है. विदाउट एनी इंटरप्शंस आप बैक टू बैक गाने सुन पाते हैं. Leica Radio 90 सुना करें, पंजाबी भी है एंड Leica Gold 2 as well.

0: भाई कौन कौन है दिल लेने वाले। हाँ, दिल ले लेते हैं, दिल देना सीखो जी, देना भी सीखिए ना। तो ऐसा ही होता है ना, दिल देते हैं तभी तो दिल मिलता है, और दिल लेने से तो बात नहीं बनती है, लेना देना तो चलता रहता है ना। क्यों, क्या कहते हैं आप कि कभी एक तरफा अगर दे दें और दिल किसी को और वो अपना दिल ना दें तो वो तो एक तरफा प्यार हो जाएगा ना। इसलिए दिल देना भी सीखिएगा, प्यार देना भी सीखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के इस आवर के सारे गाने आपने पसंद किए। वैसे अभी ये आवर ख़त्म नहीं हुए, 9 मिनट्स और रहते हैं। वेल, इट्स 8 मिनट्स to 5 o'clock। और प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में भी मिले जुले गीत शामिल रहेंगे। पहले दो गाने तो बैक टू बैक 90s एंड 80s के होंगे, उसके बाद में जय किशन जी को हम याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो तब भी मेरा साथ छोड़िएगा नहीं, मेरा साथ इसी तरह से देते रहिएगा। एक और गीत इस आवर का जरूर आपको पसंद आएगा आफ्टर दीज मैसेजेस।
1: ये है लाइका रेडियो, this is Sarita Sabharwal on Laika Radio. Laika Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE54UN।
1: वन परफॉर्मर
3: टीवी के सामने प्रोसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
2: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
4: जिंदगी बर्बाद हो गया।
1: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट,
5: फंक्शन रखा हुआ
2: है। सुनील ग्रोवर लाइव UK टूर 2026,
1: 29th October ओवर अरेना वेम्बली लंदन, 31st October मैटियोली अरेना लेस्टर।
2: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
8: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
9: लेस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातो माटे थई जा रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026, 11th to 20th October, लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड्स।

0: वाह, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने फिल्म हमेशा से चुना था, फिल्म 1997 में आई थी और आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें काजोल और सैफ अली खान ने काम किया था, संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, अनु मलिक का संगीत था और राहत इंदौरी एंड देव कोहली साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। उम्मीद करती हूँ आपने गीत पसंद किया, हल्का फुल्का गीत था, नीला दुपट्टा पीला सूट, थोड़ा चुलबुला सा गीत है, अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में गाया हुआ ये गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरा गीत लता जी की आवाज में था, फिल्म नाम से, जो 1986 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी आज ही के दिन यानी 12th ऑफ सितंबर 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजय दत्त थे, कुमार गौरव थे, अमृता सिंह थी, महेश भट्ट साहब ने इस फिल्म को बनाया था, डायरेक्ट किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और आनंद बख्शी जी ने लिखा था इस गीत को भी और इस फिल्म के सभी गीतों को। और चिट्ठी आई है तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत था, तो मैं आज के प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाई हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर वो गीत भी शामिल होगा। और अब बाकी के जो गीत मैंने चुने हैं वो जयकिशन जी के, शंकर जयकिशन जी का संगीत है, इस आवर में आप सुन पाएंगे। बहुत से गीत ऐसे हैं जो मैं दो दो गीत लिखे हैं कि भी मैं इनमें से कौन सा गीत प्ले करूं, तो पहला बता दूं प्रोफेसर के दो गीत हैं जिनमें से मैं चुन नहीं पा रही हूं, ए गुलबदन या आवाज देकर हमें तुम बुलाओ। ए इज आवाज देकर और बी इज ए गुलबदन, इन दोनों में से कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब जरा ये काम भी हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बड़ा काम आसान है। You can go into the branch online or SBI Yono mobile app के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC applies और आज आपका 1 British pound can get you 128 rupees and 90 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand. Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples. Phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana or amazing excursions. Sub included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
7: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie. In cinemas now.
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खोलेगा.
8: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
13: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
12: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
14: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
15: Hey, boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
17: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
18: Shoes tied. Phone.
19: Back before dark, love. Okay.
20: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
11: From Helzowen to Harborne. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
21: London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
11: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना हर दिल जो प्यार करेगा, फिल्म संगम से चुना था इस गीत को, 1964 की फिल्म थी और इसी के जरिए हमने याद किया जय किशन जी को, जय किशन दया भाई पंचाल, जिन्हें सभी जय किशन जी के नाम से ही जानते हैं और इनकी जोड़ी कितनी मशहूर है आप सभी जानते हैं, शंकर जय किशन, सुरों का जादूगर। और उन्हीं के बारे में उनकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन आजकल सभी को सब बहुत कुछ पता है, सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए ये AI का ज़माना है और सभी बहुत कुछ जानते हैं। और हिंदी फिल्म संगीत को एक नई ऊँचाई दी थी शंकर जय किशन की जोड़ी ने, एक ऐसे कलाकार जिनकी धुनों में शास्त्रीयता भी थी, क्लासिकल बेस भी थी, मस्ती भी थी और दिल को छू लेने वाली मिठास भी। जय किशन मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन का आधा हिस्सा आप कह सकते थे। शंकर जय किशन का नाम आते ही हमें याद आती है वो जादुई दुनिया, जहां राज कपूर की फिल्म में लता जी की आवाज़, मुकेश जी की सोलफुल गायकी एंड शंकर जय किशन की धुनें सब मिलकर एक अमर संगीत रचते थे। कितनी ऐसी फिल्में हैं, कितनी पुराने गीत हैं। और जय किशन की खासियत थी कि उनकी जो मेलोडिक सिंप्लिसिटी थी, ऐसी धुनें जो सीधे दिल में उतर जाएं, और उनका संगीत रोमांटिक भी था, प्लेफुल भी था और कई बार इतना सोलफुल कि सुनने वाला खो जाता था। शंकर जय किशन बिगैन देयर करियर इन 1949 विद राज कपूर्स रोमांटिक ड्रामा बरसात, दे कंपोज फॉर फिल्म्स लाइक दाग इन 52, पतिता इन 1953, आ इन 1953 एंड बूट पॉलिश इन 1954। इतने प्यारे प्यारे गीत हैं, जैसे ए मेरे दिल कहीं और चल, फिल्म दाग का गाना याद किया, दिल ने कहा है कहाँ हो तुम एंड राजा की आएगी बारात, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बूट पॉलिश का गीत, एंड श्री 420 के गाने कैसे भूल सकते हैं, सीमा के गीत कैसे भूल सकते हैं, ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं, मेरा जूता है जापानी, इच्चिक दाना बिच्चिक दाना, मुड़ मुड़ के ना देख, अब ये विंटेज गोल्ड प्रोग्राम बन जाएगा अगर मैंने ये सारे गाने शामिल किए, इसलिए मैं इनको विश्राम देती हूँ और ज़रा आपको कुछ और भी बता दें। राइट, दिवाली स्टोरी के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद द सनातन इवेंट्स टू गिव अवे टिकट्स टू द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी विच विल बी हेल्ड एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन संडे 27 सितंबर। अ स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 टिल 9:30 PM। सेंड द वर्ड दिवाली, या दिवाली टू यू फॉर यू टू विन पेयर ऑफ टिकट्स। इफ यू डोंट विन डोंट वरी, यू कैन परचेज टिकट्स फ्रॉम दिवाली स्टोरी .com एंड विनर्स टिकट विल बी सेंड वाय द AXS ऐप, सो प्लीज एंश्योर यू शेयर योर ईमेल एड्रेस दैट इज रजिस्टर्ड टू द ऐप एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा की तरह रहेंगी साथ में, तो आप प्लीज हमें बता दीजिएगा कि कहाँ किस तरह से आपने टिकटें वहाँ पर कलेक्ट करनी है। AXS ऐप अगर आपके पास फ़ोन पर होगा तो उसमें ही डाउनलोड की जाएंगी। तो शुरू हो जाएं फिर, लिख दीजिएगा क्या लिखना है आपने, क्या लिखना है मेरे प्रोग्राम में भी है कंपटीशन या नहीं है, मैं नहीं इसको खोल पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे लिखकर भेजेंगे क्या लिखकर भेजें दिवाली, तो हो सकता है आपको, आप विजयी हों और आपको मिल जाएं दो टिकटें।
0: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: गीत ऐसी ही बहुत से यादगार गीत हैं जिनमें शंकर जयकिशन जी का संगीत रहा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुम कमसिन हो नादा हो, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, दोस्त दोस्त ना रहा। एंड देन ये लाल छड़ी वाला गाना, वाह तुमसे अच्छा कौन है, अप्रैल फूल बनाया, ऐसे यादगार गीत शामिल करने की कोशिश करेगी सरिता। देखते हैं कौन कौन से गीत प्रोग्राम में जगह ले सकते हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स। सरिता समरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।
0: और सरिता जल्दी से आपको बता दे कि लाइव इन कॉन्सर्ट आ रहे हैं कौन, लखविंदर वडाली, पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को परफॉर्म करेंगे क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18 अक्टूबर को आईसीसी बर्मिंगम में। सो टिकटें जल्दी से अपनी बुक करा लें। एंड उदित नारायण एंड आदित्य नारायण पहली दफ़ा बाप बेटा दोनों आ रहे हैं। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन उदित आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन संडे 20th दिसंबर को। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। और यही मैं एक और याद करवाने जा रही हूँ बात आपको, और वो ये है कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 1-day internationals from Sunday 13 September until Thursday 17 September from 2:50 PM. Download and subscribe to the Jio Hotstar app now. Jio Hotstar is available on Sky TV as an app. So, आपको ये डाउनलोड करना होगा। ये थी जानकारी जो आपके साथ साझा की।
1: This is Leica Radio across the Midlands. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.

0: रफी साहब एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। आई एम सॉरी गीत के साथ बोलने की माफी चाहती हूँ, लेकिन वक्त है कि तेजी के साथ दौड़ता जा रहा है।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: जी हाँ, आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में इस लेटेस्ट एपिसोड में क्या है। होस्टेड बाय खुश, एंड इसमें है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स। सो अगर आप जानना चाहते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जब खुश स्पीक्स टू मीनल सांबरे, फाउंडर ऑफ समारिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स, तो जरूर देखिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: All the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान, दरखास्तों में जान।
4: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार।
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
7: जिंदगी बर्बाद हो गया।
4: गेट रेडी यूके, स्नेल ग्रोवर इज कमिंग लाइव विद गुत्ती, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू बाबी एंड मोर सरप्राइजेस ऑन द नाइट्स।
8: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, 2 साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।
9: एक्सपेक्ट म्यूजिक मैडनेस, फैमिली एंटरटेनमेंट एंड नॉनस्टॉप लाफ्टर। सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026 हैपनिंग ऑन द 29th ऑक्टोबर एट द ओवर अरेना वेम्बली इन लंदन।
4: 31st ऑक्टोबर मैटियोली अरेना Leicester, produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions,
9: supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: Banana function rakha hua hai.
11: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
12: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
11: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
12: Also explore 2026 cruises
11: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
13: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place. 11,
14: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
16: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
17: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
14: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
17: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
14: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
17: Get your tickets from royalalberthall.com and sinathanevents.org. Brought to you by Sinathan Events.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: मेरी बहुत से साथियों की फरमाइश पर मैंने ये गीत शामिल किया था, अमिता जी, नौशीन एंड इमरान खान, विजय गुत्रे जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, रेखा एंड आप कौन है, सोनी रावल जी, दिलीप मिथानी जी एंड अपना नाम नहीं लिखते हैं एक तो आप, मितुल पटेल, थैंक यू आपका भी, रजिंदर सिंह कालरा जी, थैंक यू एवर सो मच, दिनेश पोपट जी, भारती डी डी उल्लास टोरोंटो में, रश्मि जी, रोशनी जी, निर्मला जी, संतोष जी, फरीदा गुलाम अली जी, अर्जुन जी, जैस्मिन करसान, पिंटोरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, मधु जी, दिव्या इन हैरो, विमल रायन जी, अमित पटेल, सभी का, बहुत किसी का नाम रह गया तो आई एम सॉरी, मिस कर दिया मैंने, तो आइए जरा अब ये काम भी कर लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.30, Afghanis 87.57, Pakistani rupees 375.38, Bangladesh

0: Fault Rate is brought to you by Rahm Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Big gold ka rate hai is waqt £103.40 per gram.
0: Rahm Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Rahm Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भाई जय किशन जी के हमने कुछ कॉम्पोजिशंस आप तक पहुंचाई इस आवर में शंकर जय किशन जी की. एंड जय किशन जी का संगीत सिर्फ धुन नहीं था, वो एक एहसास था, एक ऐसी दुनिया जहां सुरों में कहानियां बसती थी और जहां हर गीत एक भावनात्मक सफ़र बन जाता था. और आज हमने उनके कुछ एक गीत शामिल किए. उम्मीद करती हूँ कि इन गीतों को आपने पसंद किया, आप लोगों के दिलों में ये आवाज़ें, ये धुनें गूंजती हो, हमेशा गूंजती रहती है. हर पीढ़ी के लोग इन्हें पसंद करते हैं और ये छोटी सी ट्रिब्यूट मैंने जय किशन जी को दी. अब प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर तक एक उन्हीं की रचना पहुंचाएगी, सुनते हैं आफ्टर. तुम देना
3: साथ मेरा. दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. London, get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट मंत्रा hollidays.co.uk और कॉल 02203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
7: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
6: From Alum Rock to Winston Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.

0: क्या बात है मन्ना डे साहब की आवाज, ब्यूटीफुल वॉइस, एंड आई फील सो प्रिविलेज कि इनसे मिलने का अवसर मुझे मिला और उन्हें इंटरव्यू भी मैंने किया था. आई स्टिल गॉट दोज फोटोग्राफ्स एज वेल विद मी. बहुत बहुत ही अच्छे कलाकार, और मुझे उम्मीद है मेरा चुना गीत आपने जरूर पसंद किया.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी हाँ, बहुत प्यारा गीत था. और ये गीत क्यों शामिल हुआ आज के प्रोग्राम में, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फिल्म कब रिलीज हुई थी. दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 12th of September, यानी आज ही के दिन, इन 1972. शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय ने इस फिल्म में काम किया था. बी आर इशारा साहब ने डायरेक्ट किया था. ब्रिजभूषण का संगीत था. नक्श लायलपुरी साहब ने लिखे थे इस गीत के बोल. चलिए ये इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से पहुंचा दें कि बिग बॉस इज बैक. आप सभी जानते हैं, देख भी रहे होंगे, एंड 20th सीजन है बिग बॉस का. और होस्टेड बाय सलमान खान एज ऑलवेज, एंड द शोज आर एयर एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. Like
3: Radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: बस इसको कहते हैं।
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते थे हमारे रजिंदर कालरा जी। आई होप यू, आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई होगी। ये गीत आप तक पहुँचाया।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए पैसे भेजिएगा, एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 रुपीज एंड 30 पैसा। अफगान अफगानी 87.46, पाकिस्तानी रुपीज 375.38, बांग्लादेशी टका 166.46, श्रीलंकन रुपी 444.46.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: It's £103.40 per carat.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: जी हाँ, मेरे पास सैंडी शाही आ रहे हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, एंड देन ओवरनाइट सर्विस गोल्ड नाइट्स भी जरूर सुनिएगा। इसी के साथ मैं सरिता आपसे इजाजत चाहती हूँ, कल फिर मिलने का वादा अगर जिंदगी ने साथ दिया। बाय बाय, टेक केयर।
5: हमारे और कितने दीवाने हैं
6: हमारे।

0: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
3: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर। 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजल 07957477330। मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald. Plastic.com.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
12: Punjab the biggest tunes, no.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी From Haycock's Green to Small Heath. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: is Leica Radio across the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Oh my God, my screen is going crazy with the word gorgeous. Everybody wants to win the Icon, London Icon photo shoot. I wish I could give at least four winners, not just one, the prize. All right, let me quickly do this. For £1, you could receive up to 128 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Desi Beat Show with Sonia. Leica
2: Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99 टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN
5: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज ओएसिस ओशंस एलीट्स फैशंस एंड स्पोर्ट्स देयर्स एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू सो व्हाई वेट बी पार्ट ऑफ दुबई Growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: ये है लाइका गोल्ड

0: Desi Vibe. Desi Vibe. Saturday nights come alive with Sonia. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
7: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
8: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.

0: Jamaica Radio.
1: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Kanish Idols अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और Husband Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साउथ हॉल travel at all protected.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
11: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10%. With code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड And